0: कर लेते हैं।
1: 18
0: भेजते हैं थोड़े
1: 18 tonight.
0: Eight 69. Copy 1075 level 1, and can you get me a Jackson number?
1: 10 phone.